0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधामोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM में 101.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान था, जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया। मैं ऐसे सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ। मेरा आपसे भी आग्रह है कि एक पेड़ माँ के नाम इस पवित्र अभियान से आप जरूर जुड़िए।
1: पृथ्वीवर 30% जमीन आणि 70% पाणी, पण यातलं गोडं पाणी पिण्याचं पाणी फक्त 2.5%। पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवूया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय

0: है पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
3: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
4: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट

0: जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर्ड बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केन्द्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमरीका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमरीका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण

गोल्डन फाइव के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारत

0: की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक, पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ौती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ौती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम 101.1 मेगाहर्ट्ज पर आणि न्यूज ऑन एआयआर या मोबाईल ऍपवर आकाशवाणीचं नांदेड केंद्र आहे। सकाळचे 8:15 झालेले आहेत। सुगम संगीत हा कार्यक्रम प्रसारित करीत आहोत। श्रोतेहो कार्यक्रमात सुरुवातीला वैशाली सामंत यांच्या स्वरात चंद्रशेखर सानेकर यांची रचना एकविधा संगीतबद्ध केला आहे अवधूत गुप्ते यांनी।

अमित चौहान और अलीशा मेंडोंसा की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुने थे। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। फिल्म का नाम था जिंदगी न मिलेगी दोबारा। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो चलिए एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

फिर स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए परम सुंदरी फिल्म का ये गाना।

0: सचिन जिगर और विशाल मिश्रा, अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में ये गीत आपने परम सुंदरी फिल्म से सुना।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम।

0: देवकी पंडित की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे संदीप नाथ और संगीतकार थे संदीप चौटा। फिल्म का नाम था साहिब बीवी और गैंगस्टर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।

0: धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में। अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

आज है दोस्तों वर्ल्ड एनिमल डे। विश्व पशु दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की 2026 की ये थीम है, उनकी आंखों से दुनिया देखें। इस साल की ये थीम हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते पर्यावरण और इंसानी दखल के बीच पशु पक्षी इस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। इनकी मदद करने के लिए विश्व पशु दिवस मनाने का ये उद्देश्य दुनिया भर के पशुओं के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी देखभाल करना आदि, इनकी मदद करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना, बस छोटे छोटे कार्यों से उनकी सहायता की जा सकती है। जैसे पक्षियों के लिए अपने छत या बालकनी में दाना पानी रखें, गाड़ियों को संभाल कर चलाया जाए ताकि उसकी चपेट में ये ना आ जाए। यदि कोई पशु पक्षी घायल दिखे अपने आसपास तो किसी पशु संस्था या चिकित्सक से संपर्क करें। पशु पक्षियों के साथ दया करुणा और प्रेम का व्यवहार करें और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति लें। पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमसे अपेक्षा रखते हैं और हमें करना भी चाहिए। आइए संकल्प लें इस विश्व पशु दिवस पर इन बेजुबान जीवों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, येन केन प्रकारेण इनकी रक्षा करेंगे ताकि ये पशु पक्षी भी सुरक्षित जीवन जी सकें और हम भी। ये गाना आइए अब सुनते हैं। ये गाना एक था टाइगर फिल्म से है।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत आपने अभी सुना, आवाजें थी तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की, कौसर मुनीर के बोल थे, सुहेल सेन का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी हो, समृद्ध हो, इसी कामना के साथ ही आज सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेन्द्र।

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

0: शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।
1: ना लगे रे जाने क्या।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद है शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958, फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी सब कुछ।

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन के

आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। शोध, स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

दोस्तों नमस्कार। किसी कोने पर, घर के किसी कोने पर सजा रेडियो विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम आ चुका है आपके रेडियो सेट तक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। आज की जो इबारत है दीवार, उसमें कुछ दीवारें बातें करती हैं और ये इबारत जो हमने फेसबुक पर डाली है वो एक बार आपके लिए पढ़े देते हैं श्रोताओं। ये दरो दीवारें जिनमें एक उम्र की कहानी होती है, कभी साथ बैठकर घुल मिलकर इन्हीं दीवारों के साए जिंदगी परवान चढ़ी। घर की ये दीवारें जिनसे कभी धूप तो कभी चांदनी को उतरते देखा था, चंदन की खुशबू की तरह आज भी आंखों में बसे हैं वो दिन वो रातें, कभी जुड़ते कभी टूटते रिश्तों की चश्मदीद हैं ये दीवारें। शादी ब्याह की धूम में साथ रत जगा भी करते देखा है इन दीवारों को, कभी प्यार कभी रंजो गम, कभी ताशे तो कभी शहनाइयों की धुन इन्हीं दीवारों में सिमट जाती थी। बचपन में जिन दीवारों पर चित्र बना देते थे, कभी जिनके सहारे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, कभी इनके साथ छुपा छुपी का खेल भी खेला। दीवारों से बने घर, उसी दर को भुला पाना आसान नहीं। माँ बाबा के घर से पिया के घर तक जाने के सफर की राजदार हैं ये दीवारें। सच सच बता ए दिल, क्या उसी दर को ढूंढती हैं आज भी ये आंखें जिनसे वादा था कभी लौट कर आने का। साथियों हम जहां हैं आज, यह हमारा शुरुआती जीवन जिस घर में बीता, उनकी दरो दीवारों में आज भी समय की स्मृतियां हैं जो कहती तो कुछ नहीं लेकिन उनकी पुकार को हम सुन तो सकते ही हैं। दीवारों से मिलकर घर बनता है, कभी सीमेंट ईंट से तो कभी मिट्टी की दीवारें, लेकिन रिश्तों का सौंधापन, साथ बैठकर रसोई में खाना खाना और दीवारों के सहारे ऊपर जाती वो छत, हम तो चले आए लेकिन यादें वहीं रह गईं। चलिए उन्हीं दीवारों के साए चलते हैं जिनकी मरम्मत का भी शायद समय आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास नहीं। वैसे दोनों दीवारों को दुरुस्त करने की कहां तक जरूरत है, एक जो मन में है और दूसरी जो घर में इंतजार करती है। कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से जिसका नाम है सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

घर की दरों दीवारों की तरफ अगर लौटिए श्रोताओं, उनमें कान लगाकर सुनिए तो शायद यही दुआएं देती हैं दीवारें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। और तमाम जो बातें दीवारों के रहते जो घरों में होती हैं, यानी कभी अपने साथियों के साथ खेलना, कभी बिताया हुआ बचपन, कभी वहाँ की गई पढ़ाइयाँ, तो बहुत सारी यादें हैं। और हमारे श्रोता जो हैं बहुत सारी यादें भी अपनी साझा कर रहे हैं, तो इन यादों को भी आप बांटते चलें कार्यक्रम में तो क्या ही बात है। आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ में, और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मात्र एक घर की दास्तान नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना है जो अपने मूल निवास, अपनी जड़ों और अपनों से दूर हो चुका है। भौतिक रूप से भले ही इंसान आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उस घर में छूट जाता है जहां उसका बचपन और उसका असली वजूद परवान चढ़ा था। एक और श्रोता ने लिखती हैं, घर छूट सकता है मगर घर की यादें कभी नहीं छूटती। कुछ दीवारें उम्र भर हमारे भीतर खड़ी रहती हैं, याद बनकर, अपनापन बनकर और माता पिता के आंगन की खुशबू बनकर। इन दीवारों ने घर में आती धूप और चांदनी के साथ साथ रिश्तों के बदलते रंग भी देखे हैं। प्यार रूठना मनाना, कहीं शहनाई की गूंज और कहीं विदाई की नम आंखें। और इन्होंने ससुराल की भी बातें लिखी हैं। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की दीवारों पर आज भी हैं बचपन के वो निशान, जहां बेफिक्र होकर पाया था मैंने मान। भले ही अब दूर हूं मैं मेरे नए घर संसार में, पर जुड़ा मेरा दिल है मायके के प्यार में। ईंट पत्थर से बनता हर मकान है, जहां प्रेम बसी वो घर महान है। थक हार कर जब शाम ढलती है, घर की याद दिल में मचलती है। तो कितनी ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हंसी आंसुओं और बदलते रिश्तों की चश्मदीद गवाह होती हैं। आज विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में शायद यही बातें हैं। और जी हाँ, बिल्कुल यही बातें हैं। अब एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके कलाकार और गीतकार आपको बताने हैं।

नूतन और देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और इस गीत के रचनाकार हसरत जयपुरी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो पूरी इबारत चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई। बुलाए नहीं भूलती वो बचपन के घर की दीवारें, मात्र 10 फीट ऊंची दीवारें और उस पर टीन का शेड। घर की इसी एक दीवार पर 2 से 20 तक पहाड़े लिखे हुए थे, यानी टेबल्स की बात कर रहे हैं ये, जिन्हें रोज याद करता था। इसके विपरीत दीवार में एक छोटी ताक थी जिस पर लैंप केरोसिन तेल से भरी चिमनी भी रखी रहती थी जिसे शाम को जाता था। इस रोशनी में शाम को क्लास होमवर्क के साथ पढ़ाई होती थी। इससे आगे वाले छोटे कमरे में अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। बचपन के घर की दीवारें भुलाई नहीं भूलती ये दीवारें, बचपन की कितनी यादें अपने आप में समेटी हुई हैं। वक्त के साथ अपने आप यादों के झरोकों से सारी दास्तां बयान कर देती हैं, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब उस घर में हम नहीं रहते, ताला पड़ा हुआ है। यदाकदा समय मिलने पर वहां चला जाता हूँ, कुछ समय वहां अकेला बिताता हूँ। यही मेरा बचपन बीता, स्तब्ध और मूक दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और बचपन की घटनाओं को चलचित्र की भांति मस्तिष्क में अंकित कर जाती हैं। बचपन के बाद यही जवान हुआ, विवाह भी यहीं से हुआ, पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहीं से हुई, नौकरी वगैरह की भी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि यादों के दरख्त बन चुकी दहलीज और दीवारों के दर्द बयां करती दमदार इबारत, जिन दहलीज दीवारों के दरमियान कभी बचपन दम भरता था, आज मूक साक्षी को दर्शक बन हसरत भरी नजरों से निहार रहे हैं। दूरियां दीवार ने नहीं दिलों ने बनाई है, दीवार नहीं दिल की दरारों से लुप्त हो चुकी उन अतीत रिश्तों खुशियों को आज भी दिल ढूंढता है, मगर दर्द दिल की ये हसरत दिल में ही दफन हो कराह उठती है। यादों के दर्पण में स्वयं को ढूंढने का ये सफर का बेसब्री और बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक जो चिलमन होती है श्रोताओ, उसे भी हम एक हल्की सी दीवार मान सकते हैं जो दो लोगों के बीच होती है। यही गीत है और ये गीत किन पर फिल्माया गया ये आपको बताना है। और साथ ही जो हमने आपसे सवाल किए थे कि कुछ यादें जो दीवारों से वाबस्ता हैं आपके पढ़ने की पढ़ाने की, या फिर किसी एक ताक पर रेडियो तो क्या रखा होता था और उसमें विविध भारती से कुछ आवाजें आती थी।

हमारे श्रोताओं ने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल ही लिख दी है इस गीत की, महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है और लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है ये। एक श्रोता ने लिखा है, आनंद बख्शी के बोल हैं और ये गाना एक प्रेमी की उस मीठी बेताबी को दर्शाता है जो अपनी शर्मीली प्रेमिका के चेहरे से हटते हुए पर्दे और बिखरी जुल्फों का दीदार करने के लिए बेचैन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी खपरेल वाला वो घर जहां मेरा जन्म हुआ आज भी गांव में सलामत है, साल में एक दो बार जाता हूं। ये मैं पूछने भी वाली थी श्रोताओं आपसे कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी अगर कोई यादें आपके साथ हों, यानी गांव के घर, गांव में खासकर देखा जाता था पहले और अब तो वैसे सब जगह ईंट और सीमेंट की ही पक्की दीवारें हुआ करती हैं, लेकिन आज भी देखने को मिलता है घर भले ही मिट्टी की दीवारों का हो लेकिन जो दिल की दीवारें होती थी वो बड़ी मजबूत होती थी। तो ऐसे घरों की जो यादें हैं वो आप जरूर हमसे ताजा करें। और क्या कभी आप अपने घरों में यानी पुराने घर में कभी लौट कर जाते हैं? अगर जाते हैं तो ये भी हमें जरूर बताएं। और हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल तो दीवारों पर कुछ ना नजर आए तो अच्छा लगता है, बच्चों को पहले हम न जाने क्या क्या हाथों से

बनाते और लगा देते थे। कई तोरण बनाए हर साल दिवाली पर, कुछ नया सा तोरण अब सब बाजार में मिल जाता है, पर उसमें वो खुशबू नहीं होती और नहीं वो प्यार जो खुद बनाकर लगाने में मिलता है। वो खुशी कहीं खो सी गई है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जो गीत आज के हैं उनके बारे में लिखा है कि बेमिसाल गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे, तब दीवार की तरफ दोनों हाथों के बीच छुप कर मतलब सब छुप जाते होंगे, और कितनी प्यारी यादें इन दीवारों से जुड़ी हैं। आज वो सब तो नहीं, पर हाँ काफी अपनी तो लगती हैं ये दीवारें। जी हाँ, जरूर होती हैं अपनी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें हमारी पूरी जिंदगी बसती है। बचपन की शरारतें, माँ बाबा की आवाजें, हंसी आंसू, त्योहार और न जाने कितनी यादें। घर छूट जाता है मगर उन दीवारों में बसा बचपन दिल से कभी जाता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत संदेश हमारे पास आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए। वैसे शादी ब्याह की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं और कलाकार।

देवर फिल्म का ये गीत था शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें भी कितनी खास होती हैं, इन्हीं के बीच हमारा बचपन हंसता है, रिश्ते पलते हैं और जाने कितनी यादें चुपचाप बस जाती हैं, घर से दूर हो जाएं तो भी उन दीवारों में बसा अपना संसार दिल से कहां दूर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी लगता है बिछड़ना सिर्फ इंसानों से नहीं जगहों से भी होता है जहां हमने अपने हिस्से का समय जिया है। घर की सीढ़ी, छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोताओं, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं।

एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की भी बड़ी सारी यादें होती हैं। क्या आपके घर में भी रेडियो था? क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा खास हुआ करता था और साइकिलें भी बड़ी खास होती थी, जो लोग एक दूसरे को दिया लिया भी करते थे। ऐसे कुछ यादें हो तो आप ताजा कीजिए। लिखते हैं आगे की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। जब हम उस जगह पर लौटते हैं तो लगता है कि ये सभी हमारा राज जानते हैं और हमें हमारी राह दिखाते हैं। होगा शायद ये कुछ बताने के लिए, कुछ बिसी यादों को जानने समझने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने घर बिहार आज भी बड़ी शिद्दत से जाता हूँ, कुछ ज्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसा

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दहलवी का लिखा ये गीत था। श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छूटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया। पुरानी यादों में खो गए क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठकर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की आती है उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओं। और जो घर की यादें होती हैं घर की बातें होती हैं वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत इन दीवारों की मरम्मत आपको जरूरी लगती है जहां कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था। ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे जरूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओं कि किसी घर के सामने आप पहुंचे जिस घर में आपको जाना था लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना। ऐसा कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में है।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने जमीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओं, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल की हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था और वो जहां भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार, तो कुछ तो बिखेर देता था वहां पर, तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो।

बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। श्रोताओं, तो कुछ ना कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से जरूर किया होगा, उनको दुरुस्त करने का और ये वादा कि वहां लौटकर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

एक लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है, खासतौर से पालतू पशुओं ने, जैसे कि बिल्ली।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनके सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो न सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological

0: advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन

0: Even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
3: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
4: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
3: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNewsHindi और फेसबुक पर

0: और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉ त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के दियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने ताइस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे, जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: सरकशी का परचम लहरा दो। एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे

0: स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहित व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: फिल्म तीसरी कसम में आपने सुना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के पहले श्रोताओं दिल ही तो है फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
4: देखो जी बहार आई, बाहों में
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आकाशदीप इस फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: खुल जाना अखिया हमार हो चुभ जाना कंगनवा मोरी कलैया सुकुमार हो चुभ जाना कंगनवा मोरी कलैया सुकुमार हो चुभ जाना कंगनवा।
1: आप सुन रहे थे लागी छूटे लागी नहीं छूटे राम इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे चित्रगुप्त का संगीत था।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ सृजन की बातें साझा करेंगे सिनेमा की बातें अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से
3: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म तीसरी मंजिल। मजरू सुल्तान पुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: सी रामचंद्र की तर्ज सहे लुधियानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहुरानी का ये गीत था सदाबहार नगमे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता दिव्य हर्ष, राधे, पारस पूजा रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारे बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्ता रेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखीलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाठान धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हसरत जयपुरी, मस्कार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश थी। ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूर मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन रौमा, अजहरुद्दीन तमामुद्दीन रौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद, ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव जिला वर्धा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आरती भगत विशाली, पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबिता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुचि और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
2: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
3: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
4: अनाम भैया, वॉलन सुनाओ ना।
3: हाँ, जरूर सुनाऊंगा रितु, अभी सुनाता हूँ।

0: बेटे अनाव, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
0: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
0: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
0: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
0: है, इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
0: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
0: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
2: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
0: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
0: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
0: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है
0: तो क्या
1: मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच मुझे तुम याद आ गई माँ।
0: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
0: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
0: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ वो तो मुझे जानते ही नहीं।
0: जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
0: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
0: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
0: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है।
1: माँ, माँ।
0: आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रहा माँ।
0: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
0: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
0: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
0: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर बत्रा बहुत अच्छे आदमी है।
1: होंगे मगर।
0: अनाम।
1: माँ इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
0: अनाम अब तुम जवान हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
1: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर

0: चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें। अनाम को पहली बार मां के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर अब ठीक है। बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

0: मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
2: आखिर क्यों?
3: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
2: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम।
3: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
2: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकाल कर फेंक दो।
3: बुरा मत मानो माँ, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर माँ मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और माँ अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है।

0: द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं।
1: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
2: न माँ कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
0: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, माँ और बत्रा, बत्रा और माँ। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर माँ के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती, घर आता, माँ कहती खाना खा। अनाम आता, खाना खाता। माँ कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
3: आ, आ, आ, आ अनाम, खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो, सो जा,
0: चल उठ,
3: उठ कर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल स्कूल चल।
4: बच्चा बहुत अच्छा आदमी है। अकेले ही जाना, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा। मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए वॉयलिन लाऊंगा। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
5: के लिए वॉयलिन। अनाम, अनाम, क्या हुआ बेटे? क्या तुम डर गए थे? सपनों डरो मत बेटा, डरो मत।
2: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना ना बजाओ।
0: बस रितु अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी? पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया, मैं चलती हूँ।
2: अनाम, ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूं।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
2: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
2: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
2: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
3: अनाम की मां अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
2: अनाम, दिन भर से कहां गायब थे?
0: बाहर था।
2: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ।

0: थे?
1: शहर में घूम रहा था।
0: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारा गर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
1: बस करो माँ।
0: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
1: ठीक है।
0: क्या ठीक है?
1: आगे से ख्याल रखूंगा।
0: कहाँ जा रहे हो?
1: सोने के लिए।
0: खाना तो खा लो।
1: भूख नहीं है।
0: ठीक है, जाओ।
1: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूछिल। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
2: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूँ, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया, कल रात को यहाँ नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए अनाम को यहाँ से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है, मैं बेचैन हूं। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली, पास हो गया है।
2: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट घंटे पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन ऊब उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात।
3: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
3: पता नहीं कौन मेरे अंदर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
3: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता।

0: महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। दो एक बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
2: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
1: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
0: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
3: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
4: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
0: कहाँ है उत्तर?
4: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
5: अनाम भैया।
0: हाँ रितु।
5: वायलिन सुनाओ ना।
0: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगी, है ना?
5: हाँ हाँ चलो।

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी इसी के साथ हैं।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के माँ बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है, और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों सुन रही है।
2: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।

0: ना
1: ना भैया।
2: प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: वायलिन वादक नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाऊं,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
5: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर

0: ये एक पूरी यात्रा है और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
1: जी वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
1: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था, उन्होंने वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह।
1: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है, कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
1: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया, बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
1: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
1: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
1: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
1: कुछ नहीं, 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 1/2 घंटा ब्रेक, खाओ पियो फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होके प्रैक्टिस करता था।
0: ओहो,
1: बैठना भी नहीं, खड़े होके, वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं, अगर पांव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पांव हिल गया।
0: ओहो,
1: तो ये तपस्या होती है
0: जी
1: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
0: बिल्कुल,
1: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
0: क्या बात है,
1: उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
0: वाह,
1: उसकी साधना है।
0: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
1: परमेश्वर, तो यहां से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया मौसा साहब के लिए।
0: जी जी,
1: मुझे फिल्म याद नहीं
0: जी,
1: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
0: बड़ी बात होती है,
1: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कव्वाल जो थे उन्होंने दी
0: जी।
1: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
0: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में, तमाम प्रदेशों में,
1: कोई भी भाषा हो अगर फिल्म बनी है
0: जी
1: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
0: साउथ हो,
1: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
0: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
1: इतना काम।
0: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
1: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
0: वाह वाह,
1: और 17,000 रूपये का घर था।
0: क्या बात है।
1: तो पहला घर अपना
0: किस इलाके में था?
1: खार में
0: जी, जी
1: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग।

0: जी
1: तो वो पहला घर था 17,000 रुपए का, और 17,000 रुपए में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हजार रुपए कर्जा था।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: आधा कर्जा था,
1: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि काम
0: काम तो कर ही रहे
1: तो
0: थे।
1: कर ही रहे थे। तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए।
0: जी
1: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
0: जी जी जी
1: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया।
0: जी
1: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया।
0: जी
1: अरेंजरमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
0: बिल्कुल,
1: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
0: म्यूजिक
1: इस
0: डायरेक्टरी।
1: इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
0: जी
1: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे।
0: जी ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये
1: जी
0: अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई
1: जी
0: हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है
1: जी
0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का,
1: जी जी
0: जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
1: अमर हो गए जी। बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार, जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगर जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है।
0: जी
1: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर, जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे। तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मनोहरी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ,
0: जी
1: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे,
0: नोटेशंस।
1: नोटेशन लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले। तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
0: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशंस।
1: नोटेशन और उसकी नॉलेज होना
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
1: जी
0: में,
1: जी
0: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
1: जी
0: बजेगा।
1: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही
0: जी
1: करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है।
0: जी
1: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया। मदन जी, आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
0: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो।
1: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज दी सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर,
0: अरेंजर है।
1: मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके साथ, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए। मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहां पे,
0: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक जी,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक ओमी की
1: सोनिक
0: जोड़ी।
1: ओमी। हाँ, सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब, और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो
0: जी
1: ब्लाइंड थे
0: जी
1: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
0: बाबा,
1: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वहां लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था,
0: जी
1: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था,
0: हाँ
1: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज। तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, बोले हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद, इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, 1.5 मिनट का पीस था, मुझे आज भी याद है। बोले नहीं राज, तुम कहीं मिस कर रहे हो,
0: गजब।
1: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पाओ की आवाज थी, वो तुमने
0: वाह,

0: शायद मिस किया है,
1: तो तुम जाओ बाकी कब किया हो। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
2: ये मेमोरी सोनी जी की,
1: क्योंकि ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा, तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी। मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा। सुना ये कहाँ पे आ रहा है? जी यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज के म्यूजिक कैसा लगेगा वहां पे, ओके टेक करो।
1: क्या बात है।
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी,
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है? नौशाद साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन ने, सोने, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं।
1: जी जी जी
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए। सिंगर्स का तो नाम आता है पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता। हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो, वो अलग बात है। अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने गाना बनाया
1: जी,
0: आपने गाना

0: बनाया और मैंने गाना लिख लिया। मैं जब तक गाना नहीं लिखता गाना मेरा नहीं होता।
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया।
1: अच्छा,
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ।
1: ओके,
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है।
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ। जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी। म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।

0: के कहाँ फ्लूट का?
1: ये मेरी डिसाइड है
0: जी,
1: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग तक फाइनल तक मैं वहां पे हूँ। जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
0: जी,
1: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाय मी, म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।
0: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आज शाम होने आई में
1: जी,
0: हॉर्न की आवाज आती है।

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ है
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के
0: नए सबके साथ और सबके साथ, बसंत साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पार्टी जी थे जिन्होंने काम किया, कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आरडी बर्मन के साथ काम किया, एसडी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी।
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में बजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम
0: वैसे
1: लोगों
0: भी
1: के
0: उन्होंने
1: साथ
0: काम किया। क्या काम किया उन्होंने एज ए अरेंजर।

0: उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया, तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी, वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते।
1: जी जी,
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था।
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था। हाँ। मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था, 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम उनके साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनके पास। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: 500 मीटर दूर थे। मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं।
1: अरे
0: लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी।
0: तो बोलते ये तो ठीक है। तो पहला म्यूजिक सुनाओ, फर्स्ट म्यूजिक सुनाया। बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया। उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम 4 बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के है।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनी राम जी के 4 नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये 4 नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया। मैं कहा ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
0: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है।
1: जी,
0: सबसे बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे।
0: ये कॉपी
1: परेशान,
0: किसी की कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो 4 बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं। लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया
0: जी।
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो अरिजन के लिए बुलाया था उन्होंने।
1: अच्छा।
0: लेकिन हो नहीं सका
1: जी, जी। सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे
1: जी।
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी डैडी,
1: मोपेट जी,
0: मोपेट डैडी ने 500 रुपए की या 450 रुपए की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली।
1: हाँ।
0: हेराल्ड गाड़ी थी।
1: हेराल्ड
0: जो से निकल गई तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मेरे कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे रोका, मैंने कहा अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे? मैं कहता अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है
1: जी,
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप।
1: जी जी।
0: आशीर्वाद आपको लेना पड़ता है
1: जी,
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी,
0: और इनके जाने तक मैंने

0: के साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया
1: जी, और
0: लेकिन
1: लगातार साथ रहा।
0: लगातार साथ रहा जब तक वो नहीं गए,
1: जी
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ।
1: जी जी जी
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: सूरत ये मौसम को भी खबर है।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
2: ऑलमोस्ट 25 साल।
1: जी जी जी, जी। कुछ यादें बांटी है।
2: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
1: ओहो, वो तो बहुत ही करामती बैकग्राउंड है भाई।
2: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
1: जी जी, महमूद की फिल्म।
2: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन उनके साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे 9:30 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सब सेट करते थे और चलता रहा, काम चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो तो, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
1: मनोहरी दादा
2: की फ्लूट हो गए,
1: सेक्सोफोन
2: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
1: मारुति बजाते थे।
2: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
1: जी,
2: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: और 9 रत्न कौन थे
1: जी?
2: मनोहरी जी
1: 1,
2: बासु जी
1: 2,
2: के भूपी जी
1: 3,
2: उसके बाद भानु,
1: हाँ
2: 4, मारुति
1: 5,
2: देवीचंद
1: 6,
2: अमृत
1: 7,
2: होमी मुल्ला।

0: आठ
1: और एक चंद्रकांत।
0: नौ। गजब गजब।
1: ये नौ लोग उनके
0: जी
1: घर में बैठे होते थे, काम करते थे,
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे ये
1: और
0: सब
1: इसमें
0: फिल्म
1: कई लोग
0: म्यूजिक
1: तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
0: के।
1: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: हाँ, चंद्रकांत
0: ये
1: हो गया,
0: पूरी टोली का,
1: पूरी टोली का काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा जाता नहीं था उनके ड्रेसिंग रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं, दारू
0: ऐसी
1: पीते।
0: सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
1: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो आप वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर,
0: क्या बात है,
1: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं।
0: जी जी
1: तो सुन लीजिए आप
0: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था। मैं केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं, हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था,
0: जी
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ 4-5 महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया
1: एक
0: था।
1: जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक पीछे से कि वायलिन वाले की गलती हो गई और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंचम जी, मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी का गलती हुई थी केवीएन, भूपे जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी, तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस? अरे उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था,
0: क्या बात है,
1: ही इज लाइक ए फ्रेंड, एंड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
0: वाह।
1: फिर मैंने कहा केबीएन केबीएन। फिर सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
0: जी।
1: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा। फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
0: जी, आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
1: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए, ले जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर,
0: हाँ,
1: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
0: जलपरी वाला।
1: वायलिन सोलो का पीस था
0: अच्छा
1: सागर फिल्म,
0: जी,
1: तो जो वो कमल हासन बजाता है,
0: अच्छा, वो जी।
1: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है, ये
0: हाँ
1: हमको पिक्चर में दिखाना है।
0: जी।
1: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे?
0: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।

0: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते,
1: जी
0: कितना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है, ऐसे नहीं टूटते। फिर मैंने अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे,
1: जी जी
0: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी, आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, ये उत्तम ये यहां से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस, तो ठीक है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू ट्रंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे
1: स्नैप आ जाए,
0: तू हाथ से करना
1: जी,
0: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है
1: जी,
0: अभी ए,
1: हाँ
0: ये साउंड है
1: जी,
0: ये चाहिए, तार टूट गई,
1: हाँ
0: तो की दो तीन रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है,
1: हाँ हाँ,
0: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
1: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
0: नहीं नहीं वो पीस, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है, तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं, तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं डायरेक्टर बना तब मुझे समझ में आया, ओ
1: काम करते रहने से हो जाता है। ये जो अजीब सा गाना था ये कौन सा था?
0: मुझे याद नहीं,
1: वो याद नहीं। अच्छा।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: उजाले।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?

0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है ना, बोलो, बोलो। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
6: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

फूलों की खुशबू में तेरा ही सुरूर अच्छा लगता है, तेरी आवाज में डूबा ये नूर अच्छा लगता है, तू बोलती है तो लफ्जों में बहारें जागती हैं, तेरे लहजे का ये मीठा दस्तूर अच्छा लगता है, हवा भी रुक के सुनती है तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का दिल पर ये फितूर अच्छा लगता है, तेरी आवाज जब छेड़े कोई भूली हुई गजल, हर एक नगमे में तेरा ये गुरूर अच्छा लगता है।

से दिल में रोशनी बिखरती है, मेरी हर सांस में खुशबू तेरी ही महकती है। तेरी नजर जो कभी मेरी नजर से मिलती है, वक्त कुछ पल के लिए यूं ही ठहर सा जाता है। तेरे कदमों की आहट जब सुनाई देती है, दिल की धड़कन में कोई गीत बहने लगता है।

तुम मुस्कुरा दे तो मौसम भी बदल जाते हैं, चांद भी रात में कुछ और खुशनुमा रहता है। तेरी बातों में जो ठहराव है वो क्या कहिए, दिल को हर हाल में संभाले रहता है। तेरे होने से मुकम्मल सी लगती है दुनिया, वरना इस दिल में कहाँ कोई तेरे अलावा रहता है। मैंने मांगा ही नहीं और कोई ख्वाब कभी, तेरा चेहरा ही मेरी चाहत का नजारा रहता है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। तेरी हंसी छूती है जब मेरे ख्यालों को, दिल मेरा फूल सा खिला रहता है। तेरी आवाज का असर कुछ ऐसा है मुझ पर, दूर रहकर भी तू करीब सा रहता है। तेरे खामोशी में भी सुनता हूँ तेरी बातें, तेरा एहसास मुझ में समाया रहता है। तेरे आने की खबर भर से महक उठती है शाम मेरी, जैसे मौसम कोई खुशगवार रहता है। तेरे होने से सुकून मिलता है इस दिल को, तेरा ख्याल हर लम्हा मुझे थामे रहता है।

आंखों का असर किस तरह बयान करूं? एक नजर थी मगर सदियों की तलाश मंजिल थी। तू मिला तो मुझे खुद से भी मोहब्बत होने लगी, तेरे आने से मेरे होने की मुझे वजह मिली। तेरे बिन भी तेरा एहसास मेरे साथ रहा, जैसे वीरान मकाम में कोई रोशनी की खिड़की थी। हमने चाहा भी नहीं इश्क हो इतना गहरा, फिर भी इस दिल में तेरी चाहत की बेकरारी।

तू जो चुपचाप मेरे सामने बैठा रहा उस खामोशी में भी एक मीठी सी शरारत थी। अब न मंजिल की तमन्ना न सफर की फिक्र रही, तेरा हाथ साथ हो हर घड़ी, दिल को बस इतनी ही चाहत थी। न कोई वादा मांगा न कोई कसम तुझसे, बस तेरे साथ की ख्वाहिश ही मेरी इबादत थी। अब जो तू साथ है तो और क्या मांगू मैं, मेरी हर धड़कन में बस तेरी ही मोहब्बत है।

तेरी नजर से जो गुजरा तो ख्वाब हो गया, ये दिल भी तेरे इश्क में बेहिसाब हो गया। तेरे कदमों की आहट ने छुआ जब दिल को, सूना सूना सा मेरा घर भी गुलाब हो गया। तेरी हंसी ने मेरी शाम को सवारा यूं, जैसे वीरान फलक पर कोई आफताब हो गया। मेरे ख्याल की बारिश जो बरसी रात भर, हर एक जख्म मेरे दिल का लाजवाब हो गया। तेरे साथ जो गुजरा वो पल ठहर सा गया, वक्त जैसे कोई खूबसूरत किताब हो गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि यह क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा

0: सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। समीर का लिखा गीत सुनिए, उदित नारायण, अलका याग्निक, विनोद राठौड़, मिताली चौधरी की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है वक्त हमारा है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं अमित कुमार, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों कार्यक्रम की अगली पेशकश है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है विवाह।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। नगमा निगार है जावेद अख्तर, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है सागर।

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन और 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। शाम 7:00 फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम होगा सैनिकों की शौर्य गाथा। आज सुनिए एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज साज और आवाज में सैक्सोफोन पर आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी धुने। कलाकार हैं सुरेश यादव। रात्रि 8:00 हवा महल में आज नाटिका परिवर्तन का पहला भाग। लेखिका है कामना चंद्रा, निर्देशन है अनुराधा शर्मा का। रात 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है गायक शैलेंद्र सिंह पर। रात 10:00 छाया गीत में आज आप सुनेंगे यूनुस खान को। कल सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार और चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का 332वां भाग सुनिएगा। 6:45 इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला का 5वां भाग। कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हम है राही प्यार के। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2:00। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार उषा खन्ना पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कल दिन में 10:00 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का 3रा भाग। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दिन में 11:00 संगीत का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे राग अनुराग। 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1:00 हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर। कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे।

कल दिन में 3 बजे सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के विषय हैं शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद जरूरी है।

कथा सुधा में सुनिए अमावस की रात का दूसरा भाग, सुकून भरे घर स्वच्छ घर, और व्यंजन में छत्तीसगढ़ के चौसेला बफोरी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए पीसीओडी आईवीएफ विषय पर डॉक्टर ज्योतिषा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, संपादन सहयोग है मनीषा सिंह का, प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले। एक बार फिर सुनिए कल सेहतनामा में आप सुनेंगे पीसीओडी आईवीएफ, इस विषय पर डॉक्टर ज्योतिषा से की गई बातचीत।

शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल शाम 7 बजे आप सुनेंगे फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत कल आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म से। कल की फिल्म है उमराऊ जान। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आपको सुनवाएंगे नाटिका परिवर्तन का दूसरा भाग। लेखिका है कामना चंद्रा, निर्देशन है अनुराधा शर्मा का। रात 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए और कल रात 10 बजे छाया गीत में आप सुनेंगे सलमा सैयद को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है। संध्या रंजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

आइए सुने जगजीत सिंह और साथियों को। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है खलनायक।

0: श्रोताओ नमस्कार, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं चौथी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार, शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में, और शेखर दादा अपने ज्ञान के खजाने से देखते हैं आज कौन सी मोती की चमक बिखेरने वाले हैं।
2: सबसे पहले तो संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक युग का थोड़ा छुपा हुआ पन्ना खोलने जा रहा हूं।
1: जी,
2: आप में से कितने लोगों को पता है कि मन्ना डे जी के काका कौन थे?
1: केसी डे।
2: जी हाँ, कृष्ण चंद्र डे उनका नाम था और वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। बांग्ला में उनके बहुत सारे भजन, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे सुगम संगीत की रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। और ये वो कालखंड है ममता जी, जिस समय फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो कलकत्ता में मूलतः हुआ करती थी, मुंबई में और लाहौर में भी थी, लेकिन मेन जो प्रोडक्शन होता था, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो थे वो उस समय कलकत्ता में थे, और कलकत्ता के ही श्रेष्ठ संगीतकार गायक हमको इसी वजह से मिले, और बांग्ला के भी श्रेष्ठ निर्देशकों का हमें योगदान मिलता है हमारी प्रारंभिक फिल्मों में।
1: जी,
2: केसी डे जी नेत्रहीन गायक थे
1: जी,
2: और दरअसल जब वो मुंबई जब उनका आना हुआ बाद में, तो उनके भतीजे थे मन्ना दा, तो मन्ना डे जी को इसलिए भेजा गया था कि भाई काका हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, तो आप हाथ पकड़ करके अपने काका को हर जगह लेकर जाएंगे ताकि काका सुरक्षित रहे। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, मतलब लोग कलकत्ता में रहने वाले डरते थे। तो केसी डे साहब यहाँ आए और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, पर आज मैं चाहता हूं कि आप हमें एक गीत सुनाएं जो फिल्म का गीत है। ये फिल्म है धूप छाँव, उसमें उन्होंने गाया भी था
1: जी,
2: और उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी
1: जी जी,
2: तो उनके ही ऊपर वो फिल्म आया गया था
1: जी।
2: तो मैं चाहता हूँ 1935 की फिल्म धूप छाँव का ये गीत श्री कृष्ण चंद्र डे, जिनको हम केसी डे जी के नाम से जानते हैं। बाबा मन की आंखें।

0: धूम छाओ फिल्म का ये गाना केसी डे के स्वर में अभी आपने सुना। दादा हमें बताइए कि केसी डे के गीतों की जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा थी, तो क्या उनकी गायन की विशेषता थी, क्या कारण था, इतने लोकप्रिय कैसे हुए?
1: भारतीय मानस की विशेषता रही है कि एक तो उनको सधा हुआ गाना अच्छा लगता है
0: जी,
1: कि सधा हुआ गाना है, सीखा हुआ गाना है। तो जैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे सधे हुए गायक थे, रफी साहब थे, लता जी, आशा जी, मन्ना दा स्वयं,
0: जी जी
1: जिन्होंने संगीत सीख करके गाना गाया। पर कुछ गायक थे जो मस्ती वाले गायक थे
0: जी जी
1: और कुछ गायक थे जिनको ईश्वरीय उनकी आवाज में तत्व होता था,
0: वरदान मिला था।
1: वरदान मिला होता था कि वो जब गाते थे तो आपकी लौ लग जाती थी, आपकी अपने आप आंखें बंद हो जाती थी। और ये जो गाना है, इसके अगर आप शब्दों को भी ध्यान से सुने तो इतना सुंदर इसका काव्य है।
0: जी
1: और वो लिखा था वसंत कुमार दुबे जी ने,
0: जी जी
1: बाबा मन की आंखें खोल, दुनिया क्या है खेल तमाशा, चार दिनों की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू ले के हाथ में, तोल सके तो तोल, बाबा मन की आंखें खोल। तो इस तरह का आप ये भी देखिए कि कैसे इतने कम शब्दों में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश इसके अंदर है। तो आप सब श्रोताओं को ये रचना अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूं इसी क्रम में आप एक और रचना केसी डे जी की सुनाए। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मिश्र भैरवी में, फिल्म है पूरण भगत
0: जी।
1: ये मेरा ऐसा अनुमान है कि 1933 या 1934 की फिल्म है। और शब्द हैं, जाओ जाओ मेरे साधु, रहो गुरु के संग। आप सब इसका आनंद लें। इसके संगीतकार थे श्री आर सी बोराल
0: जी।

0: आपने अभी ये गीत सुना आदरणीय केसी डे जी की आवाज में। दरअसल कृष्णचंद्र डे, केसी डे साहब जो गाते थे उसमें न केवल शास्त्रीय संगीत का अंश तो होता ही था, लेकिन उसमें बंगाल की जो लोक गीत की परंपरा है उसका भी बहुत सारा अंश वो समाहित करते थे, जैसे कीर्तन
1: जी जी,
0: जैसे भटियाली। तो इस तरह की रचनाओं का असर, आप जब एक लोक गायक होते हैं, लोकप्रिय गायक होते हैं, तो आपके गाने में कहीं ना कहीं वो असर जो है वो आ जाता है
1: जी।
0: तो ये एक रचना मैं आपको बांग्ला में सुना रहा हूँ ताकि आपको उसकी खुशबू बंगाल की मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि इस खुशबू का प्रयोग कैसे केसी डे जी के गानों में, एस डी बर्मन साहब के गानों में या और दूसरे बंगाली संगीतकारों के गानों में आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा।
1: जी आप सुनाएं प्लीज।

0: भरधाव वेगात वाहन चालवाल,
1: लाख मोलाचा जीव गमवाल,
0: वाहन वेगावर नियंत्रण ठेवाल,
1: जन्मभर सुखाने प्रवास कराल।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: अरे वा, खूप दिवसांनी।
5: हो यार। अच्छा ऐक, दाढी करण्याचे किती होतील?
4: अहो तेच 60 रुपये।
5: अरे यार, आता फक्त माझ्याकडे 30 रुपये कॅश आहेत।
4: हे बघा, दोन पद्धती आहे। पहिली अर्धी दाढी करून घ्या,
5: आणि दुसरी
4: अहो डिजिटल पेमेंट करा UPI ने।
5: अरे वा यार, UPI ने तर वाचवलं।
4: एक काम करा, फेशियल पण करून घ्या।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मिराया वर्मा, फतेह, कनिका कपूर और रविंद्र उपाध्याय की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है विशाल शेखर का और फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है सुखविंदर सिंह की आवाज में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है ओम शांति ओम।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत। कमाल खान, सुजैन और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है वांटेड।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम है कजरारी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रूपये की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग

0: तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा हुर्मुज जलरम मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है है और तीव्र

0: गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
1: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
3: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
3: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
5: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने ITC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
3: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग

0: सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुरमुज जलरमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
2: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी और सायरा बानो की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है अमन।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। खुदा को भी मना लूं

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। फिल्म का नाम है इशारा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है माया।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है उपासना।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में

0: पल्लम कोई करता चमर होगा।
1: वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैले

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

0: शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।
1: ना लगे रे जाने क्या।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है, कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है, और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव।

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी। सब कुछ सी

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंपकर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत।

जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। शोध, स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: छाया गीत में आज ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर जोड़ दिया है ताकि सुनने में हैरत का अनुभव हो और ये एक विलक्षण अनुभव बन जाए। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। दुनिया के दो अलग अलग कोने, दो अलग अलग शख्स, वक्त के स्केल पर जाने कैसे घूमती है धरती कि दोनों आते हैं एक दूसरे के करीब, इतने करीब जैसे बरसों से जानते हों एक दूसरे को, जैसे वो बने हों एक दूसरे के लिए।
1: मगर लगता

दुनिया, जुल्मतों और बेदर्दी वाली ये दुनिया, यहां लगती हैं ठोकरें, यहां टूटता है भरोसा, यहां रोशनी के सागर में मिलता है अंधेरा, और कभी कभी लगता है कि सचमुच इस दुनिया में है कोई कोना जो हमारा अपना हो, जहां हम सुकून से जी सकें।

0: अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: मुझे गिरे सावन
2: सुलग सुलग जाए मन।
0: हम अभी हाजिर हुए।

बारिश सिर्फ आसमान की मुंडेर से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमेशा बादल अपना बटुआ खोलें और लुटाते रहें बूंदों की अशर्फियां हमारी धरती पर। कोई कोई बारिश मन के अंदर होती है और सुलग सुलग जाता है मन।

उदास है दिल, उदास दिल का रहा है उदासी भरा नगमा। उदासी भरे नगमे हमारे दिल को सुकून देते हैं, हमारी उदासी को सहलाते हैं, हमारी जिंदगी को अनमोल बनाते हैं और हमें हौसला देते हैं आगे बढ़ने का।

0: आज के छायागीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।
1: न तुम हमें जानो,
2: न तुम हमें जानो।
0: फिल्म बात एक रात की, मजरू सुल्तानपुरी, सचिन देव बर्मन।
1: ओ मेरे दिल कहीं और चल,
2: गम की दुनिया से दिल भर गया।
0: फिल्म दाग, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन।
1: मुझे गिरे सावन,
2: सुलग सुलग जाए मन।
0: फिल्म मंजिल, योगेश राहुल देव बर्मन।

फिल्म ठूकर, मजाज लखनवी, सरदार मलिक। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी।

0: दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मिथ मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मिथ तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jayashankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said, it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China, and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone.

0: प्रसार भारतीच्या वेब्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर ऍपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. रात्रीचे 11:10 झाली आहेत. जपान इथं आयोजित आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 दैनंदिन आढावा आता ऐकूया.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
2: नमस्कार. आईची नागोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है. यहां से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहां 4 साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे. 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा. ओवरऑल पदकों की संख्या हांगझू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे. इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं. पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी. इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा. हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया. खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया. अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे. 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए. अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल

0: ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धरों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीवी इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया।
0: मोना, 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां, 6वां स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर 4था स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा, लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट सेट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
0: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
1: जब भी हम किसी

0: राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है। तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया। तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहां निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी। उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
0: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
1: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
0: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा। लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
1: तीरंदाजी में मोना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
0: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
1: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
0: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो

0: शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है
1: जी। और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
0: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल

0: तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे हैं, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा। 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
1: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
0: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
1: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है।
0: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
1: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है। खासतौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की 2 टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहां सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं, और एशियाई स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
1: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात है?
0: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार 1 ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है, और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहाँ निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक भारत की झोली में डाले और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो एक गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी 2 प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर लगातार जिनका दबदबा रहा है वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहाँ तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विद्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहाँ जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
1: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
0: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी। और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ से देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
1: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आया लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
0: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनहद सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही है। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।

0: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि इन खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
1: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
0: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपकटेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
1: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर है और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने, जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल है उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए, तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
0: मोना स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
0: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का यह आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: आताच आपण ऐकलात जपान इथं आयोजित आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 दैनंदिन आढावा। अस्मिता वाहिनीचं दुसरं प्रसारण समाप्त होत आहे। अस्मिता वाहिनीचं पहिलं प्रसारण उद्या पहाटे 5:50 सुरू होईल। दरम्यानच्या काळात एआयआर मराठी, डीटीएच उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन एआयआर लाईव्ह मोबाईल ऍपचं प्रसारण अखंड सुरू राहील। तेव्हा निरोप घेऊया। शुभरात्री। जय हिंद।